जो जल पाथा नेपाल सम्बन्धिन्छ सब पी खुद दिल्ला थो दशमी थो रेडियो नेपाल ख अनि नादिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। प्रधानमन्त्री भलेन्द्र शाह अर्ग्यानिक उत्पादन या प्रमाणीकरण या व्यवस्था स्वदेशी मिले या यता उजौँ ब्यादि गुदु। प्रधानमन्त्री ओ मन्त्री परिषदीय कार्यालय मिग अर्ग्यानिक कृषि व्यवसाय या कुसा संगठन अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपाल या दुजापी नापाजुगु सहलसँग प्रधानमन्त्री शाह प्राङ्गरिक सा उत्पादन या गु निजी उद्योग व सहकारी संस्था यता गुहाली अनुदान बी मागु व्यवसाय या मा कथम व्यवस्था या यता नापा स्वापुर्दुगु निकाय दथुई उजौँ ब्यादिगु ख। प्रधानमन्त्री शाह अनियन्त्रित रासायनिक सा व विषादीय नियन्त्रण यासे अर्ग्यानिक कृषि प्रवर्धन या नीति सरकार मागु पलान ह्याकिगु धया दिल। थोए झोले प्रधानमन्त्री शाह अर्ग्यानिक सा उत्पादन वा न्यात रासायनिक सा कागु सुविधा सरह सुविधा जुई मागु माग सरकार प्याची कथन सुयाचनाको धया दिल। अर्ग्यानिक उत्पादन निर्याते सरकार बिहाचङ्गु अनुदान निधन थुके दिनाचङ्गुली थो हाठ्या कानुनी कथन हे निराकरण यायगु कुत या विशेष मन्त्रालय या कार्यविधि दिएका चुनागु एकलङ्कना दिगु दुसा सहलसम व्यवसाय त्यस अर्ग्यानिक उत्पादने अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण या व्यवस्था यो हे खर्च जुइको जुगुलिन सरकार या नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कागु प्रमाणीकरण एजेन्सी स्वदेशी पलिस्ता जुई मागु माग यागु ख थोए दथुई अर्ग्यानिक उत्पादन या अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण या यता ठिके जुई गुली प्रमाणीकरण बिया वया चङ्गु नेङ्यागु प्रतिशत अनुदान न बन्द जु गुली थुकिया त हान ह्याके त न व्यवसाय त्यस इना प्याना दिगु ख। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल विश्वविद्यालय तेके प्राज्ञिक स्वायत्त तथा उपया यङ्कुसे दलीय भागभण्डा नङ्के मागुली बबिया दिगुदु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुइ नेकगु दमुज्या लसता मिक किप्ली गोसा गगु ज्याचोले विश्वविद्यालय सहकुलपति नापा मन्त्री पोखरेल त्रिवीय पुलाङ्गु मसिका लेङ्का तसे नुको अध्याय न्याकिगु प्राज्ञिक स्वायत्त यता अझ प्रोत्साहन यासे दलीय भागभण्डा नङ्के मागु व योग्यता प्रणाली छेलाबुला या यता इनाफ्याना दिगुदु। विश्वविद्यालय तेके सरकार सहे छुन कथय हस्तक्षेप दबाब मजुईको नेतना दिसे मन्त्री पोखरेल हुपी उपकुलपति नापा विश्वविद्यालय फुक्क संयन्त्र या त सुशासन या प्रतापभूति जुइगु याना ज्या या यता इनाफ्याना दिगुदु। संघीय संसद मातहत्या सोङ्गु समिति बैठक थौ चोने टेङ्गुदु। संघीय संसद सचिवालय कथौ थौ विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति विधान व्यवस्थापन समिति ओ संघीयता सबलीकरण व राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठक चोनी गुजुगु ख। विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठक आर्थिक द 2083-84 अध्यक्षीय कार्य योजना तयारी विशेषण सहल जुइगु ज्याचो दुसा थो समिति बैठक थौ सुते झिन्छता इले चोनीगु गोसादु। विधान व्यवस्थापन समिति बैठक सुतेसिया चिन्छता इले चोनीगु गोसा दुसा बैठक अभिमुखीकरण ज्याचो विशेषण सहल जुई। संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरकार समिति बैठक दक्षिणी सीमा लागाया मनुतेगु शान्ति सुरक्षा विशेषण सहल जुई समिति बैठक निनेसिया नितत्या इले चोनीगु गोसा दु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संस्थापक पुष्पकमल दाहा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ पी चाकगु लुमन्ती दिवस मिगतिथि ज्याजुयाना हङ्गुदु। लुमन्ती दिवस या लसता नेकपा एमाले या राजस्थानी प्रदेश कमिटी मिग गोसागुगु ज्याझोले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जनता अधिकार पलिस्ता लोकतान्त्रिक हिउपा या नेहलुवा राजनैतिक दलसँग जुइगु धयादिगु ख। अथ्याना स्मृति दिवस या लसता पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान मिग किपुली गोसा गोगु ज्यासोले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा या संयोजक पुष्पलाल पुष्पकमल दाहाल गणतन्त्र उपलब्धि र क्षार्थ प्रगतिशील शक्ति छप्पा जुई मागु ध्यादिगु खसा ज्याजोले नेकपा या सह संयोजक माधव कुमार नेपालमा पुष्पलाल श्रेष्ठ बिपी कोइराला मदन भण्डारी तुलसीलाल अमात्य गणेश मान सिंह व कृष्ण प्रसाद भट्टराई नापाया नेपाया वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलन या राष्ट्रिय व्यक्तित्व तेगु हना जुई मागुली बब्यादिगु ख। नेपाली कङ्ग्रेसमा भारतीय बिहारी दुम्पी
नेपाली कङ्ग्रेसमा भारतीय बिहारी जेले लापिङ सरलाई निमा किसान्ते गु थत्थे रिहाय नीति कूटनीति कुत या त सरकार नपा माग्या गुदु काटिया पार्टी कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलाल पितनादीको विज्ञप्तिसँग सरलाय बलरा नगरपालिका सुरेश प्रसाद सिंह व नागेन्द्र प्रसाद सिंह सीमावर्ती भारतीय बजार रासायनिक संज्ञाता वङ्गु झोले जोङ्गु ख कङ्ग्रेसमा थमा कङ्ग्रेसमा थपिनेको बुझाया नीति साहेगु जोले जोपी किसान तेगु रिहाइया नीति सरकार थते कुतया त इनापिया गुदु मानवीय आधारे उमिता थथे रिहाइया न बिता कङ्ग्रेस इनापिया गु खस विज्ञप्ति छ नेपाल भारत दतुया ऐतिहासिक स्वापु खुला सीमा हो निगु दे दतुया मनुत दतुई दया वया चोङ्गु आत्मीयता या लिधन्सा थो संवेदनशील विषय थथे हङ्केता इनापिया गु ख कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय घोषणा यागु कानून निर्माण व सुधार द अभियान ताला के गु नीति उच्चस्तरीय समिति निसङ्गुदु कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतम या नायसुस निसङ्गु उच्चस्तरीय समिति विषयगत मन्त्री महान्यायाधिवक्ता नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष सर्वोच्च अदालत मुख्य रजिस्ट्रार प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद कार्यालय कानून सचिव सपुदुगु मन्त्रालय सचिव नेपाल कानून आयोग सचिव व कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सचिव दुज सचिव जुइगु जुगुदु उच्चस्तरीय समिति प्रचलित कानून तेगु पुनरावलोकन संशोधन खारेजी संविधान कथन मागु नुगु कानून देखि नीति मागु सिफारिस याइगु व्यवस्था नन्दु नेपाल ऊर्जा लगाय नियामक निकाय कथा पलिस्ता जुगु विद्युत नियमन आयोग हुपिन दुजते पद गोपनीयता या शपथ कया दिगुदु ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ बिहिबार मन्त्रालय आयोगका अध्यक्ष डाक्टर राम प्रसाद धिताल व दुजपी बलराम सिलवाल लोकराज पाठक जयराम भण्डारी या त पद गोपनीयता या पाफेका दिगु ख सरकार हाइड्रोजन लिदंस कागु सवारी जोर्ल या सुरक्षित टिसी लाइगु कथा विकास सञ्चालन नियमन या नीति मागु नीतिगत व्यवस्था यागु आजु मेगु सुज या इनाप्यागुदु पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कानुनी तथा प्राविधिक लिदंसा देका मालिगु आजु अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास नियामक व्यवस्था सुरक्षा मापदण्ड व दिशा निर्देश यायगु हाइड्रोजन प्रविधिसँग रूपान्तरण या सम्भावना व मागु जनशक्ति विकास नापाया सुझ आमन्त्रण यागु ख विश्वविद्यालय अनुसन्धान संस्था व्यावसायिक निकाय उद्योग विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्था व सपुदुगु सपुतैपिसँग सुझ बी फै अध्ययना थगु अनुभव अध्ययन अनुसन्धान व व्यावहारिक अभ्यास या लिदंसा लिखित सुझन बी फैगुजुगुदु मन्त्रालय हाइड्रोजन लिदंस कागु सवारी जोला नापाया अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास व सिकाई न्यवेता इनाफ्याना तहकु दुसा नीतिगत कानुनी व नियामक व्यवस्था उत्पादन भण्डारण ढुवानी वितरण इन्धन ज्याके मागु पूर्वाधार व सवारी सञ्चालन नापा स्वापु दैगु सुरक्षा मापदण्ड नापा दिशा निर्देश ल हागु वाता चुलाके चियङ्गु ख अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्य प्रदेश सरकार या तत्कालीन अर्थमन्त्री सचिव नापा या त भ्रष्टाचार यागु दोपस मिग विशेष अदालते मुद्दा दायर यागुदु सर्लाय बागमती नगरपालिका दुगु बागमती फन पार्क एन्ड रिसोर्ट आयोजना निकगु खुसी देक गुली अनियमितता जुगु दोपस मुद्दा दायर यानागु आयोग थागुदु आयोग निर्माण व्यवसाय या त बोलपत्र मूल्याङ्कन मापदण्ड देक गु झुटा व फर्जी भन दुतबिया ठेक्का प्राप्त यागु व सार्वजनिक सम्पत्ति स्याङ्क गु आयोग ठहर दु धाया धागु दुसा आयोग मध्य प्रदेश सरकार तत्कालीन मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर विरुद्ध सुई यागु करोड बराबर बिगो माग दाबी नापा यागुदु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुजसँग सेवाग्राही नापा घुसकया चोङ्गु इले आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानिया कर अधिकृत युवराज पाल या त न जोङ्गुदु आयोग वर्तिवासँग खटिजुगु पुजसँग सेवाग्राही नापा घुसकया चोङ्गु इले कर अधिकृत पाल या त जोनागु आयोग सूचना अधिकारी प्रकाश पोखरेललाई जानकारी बिया दिगु ख लहाने दुगु छगु कम्पनी या कर परीक्षण या त अपुका बिगु दासे कर अधिकृत पाल सेवाग्राही नापा घुसकागु दोपदु पूर्वाधार निर्माण तथा विकास नपाया आयोजना इलेहे पुअङ्केता

मामिला या त यखनफुङ लिपा विद्या त अञ्च भिङ्क लिपाङ्गु ख्वा बिग विशेष आफला सल जुगु मन्त्रालय धापुदु। प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा भारतीय समकक्षी सूर्यकान्त या पासाया बोने मिग भारत भ्रमणया नीति छागुदु। भ्रमणया झोले प्रधान न्यायाधीश डाक्टर शर्मा भारतीय प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त नापा निगुदे दथुया नाप्ला ज्या नापा भारतीय सर्वोच्च अदालत या त सोया दिगु व भ्रमणया झोले सर्वोच्च अदालत या प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइराला नापा निगुदे दथुया विशेष खलामला यैगु ज्याझुदु। क्यान्सर व मेगु लुए नापा वासके छेलिगु वास इले इले खने दुईगु हाठ्या या त सधैँ नीति हङ्के त सरकार मागु प्रक्रिया न्याजा कगुदु। कच्चा पदार्थ या मुखे उपयोगु उतार चढाव या हुने वास मुह जुइगु हाठ्या नङ्के त वास या मुह समायोजन नापा या लम्पु छेलेगु ज्या सरकार न्या नाचङ्गुदु। बाजुराया गुगु स्थानीय तह खुसीबा चलाया आफ्ना जोखिमे लागुदु। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना 2083 कथ जिल्ला या अथेहे सछिट्या बस्ती जोखिमे लागुदु। सा सछिव झिङ्यागु बस्ती थत्

आजु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिर रेढाङनी दाढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ युलचोहो रामचन्द्र पौडेल से दुङराब्री पुर्खासे लाबा त्याग बलिदान थेन वीरता से लामा तिनी नेपाली से थोबो थिसी राप्पारी खाम्बा मुला बिसी सुङबा मुला तिनी ह्युलबाङ विभूति भीमसेन थापा ला ग्यार्जा गिक्से निचुइ घाछा केवासाङ दिन्छेन्डी सेङबा गेखोर्दी लेङमो थान्सुबाने युलचोहो पौडेल से दुङराब्ला ज्याबा पछ्यादा किनबारी खाम्साम जेखेन दाते ज्याबा ताबारी खाम्ला बिसी सुङबा मुला युलचोहो पौडेल से मोकुन डिक्सी भ्रष्टाचार थिएन विकृति दा नुन थुम्ना लासी सुशासन ग्याम ह्युल्दा विकास री गाछा बोरबारी खाम्साम जेखेन युलबाङ विभूति भीमसेन थापा लाछ्याम स्यान्दो वीर कादेदा जेन ताला बिसी सुङबा मुला सूचना थिएन संचार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल छिनासे कमजोर संचार थुम्से सरकार थिएन सार्वजनिक थुम्दा प्रभावकारी ताम युबारिन आखाम्बा थिएन युलबारी राङ्ला उत्तरदायित्व नोन छोना लाबारी आखाम्बा ताबासे संचार थुम्दा व्यावसायिक जिम्मेवार थिएन कोङबा सोबारी खाम्दोला विशे सुङबा मुला सूचना थिएन संचार ब्लोन खाङ्री तिनी अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ नेपाल थिएन काठी ताबा संचार ब्लोन तिमिल छिनासे राङबाङ उत्तरधायी पत्रकार से जेकेन सुशासन पारदर्शिता तेन लोकतान्त्रिक मूल्यदा झ्याबा सोबारी खाम्ला सुङबान ब्लोन तिमिल छिनासे सरकार नियन्त्रण मुखी पत्रकारिता दा आङ्यानबा बिची सुङबा मुला ब्लोन तिमिल छिनासे पत्रकारिता नाङ्रिन ग्रेन जिम्बा किन्बा थुम ताबासे पत्रकार कादे सत्य तथ्य थेन भिनिदा घोसी जिम्मेवारी पुइसी घेल लातोला बिसी सुङबा मुला काठुरी अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ नेपाल से अनलाइन रि मुबा मल्टिमिडिया पत्रकारिता स्पष्ट थिम सोसी व्यवस्थित तादोबा ताम थान्स्युबा मुबा चुराङ लासिन ब्लोन खाङ्री तिनी ताबा काठुरी सूचना थिएन संचार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल छिनासे बाजुरा जोङला बढी मालिका थुम्री योनान टेलिफोन थेन इन्टरनेट सुविधा धोना लाबारी सुङबा मुला पर्यटकीय थुम बढी मालिकारी टेलिफोन समस्या मुबा ताम्री संचार ब्लोन तिमिल सिनासे राङदा चु ताम थे ग्लाग्याम खाबासे योनान सेवा धोना लाबारी नेपाल टेलिकम दा सुङबा हिन्ला स्यार थेन क्लाङब्लोन सस्मित पोखरेल से स्यार परामर्श छोङबोन कादेदा तोक लाबा लाग निचुइङा धरौटी व्यवस्था ग्याम सरकार लिचा आताबा बिसी सुङबा मुला स्यारला ताम्री गे लाबा सानग्युर बोन कादे थेन तिनी सिंहदरबारी मुबा ब्लोन खाङ्री ताम ताबा काठुरी ब्लोन पोखरेल से स्यार घेन्दुन थेन सरकारी घेजाङ्री निस्तारी निरा पिनबा विदाला उपयोग लाबारी मोइजेन लासिबान चुर निर्णय नन तोर मार दाते दा आता बिसी सुङबा मुला सम्पत्ति सुदृढीकरण विभाग से नोर्दिङ 2082-83 गोर निस मुद्दा छिमखाङ्री पिनबा मुला विभाग से तिलमा सार्वजनिक लाभा विवरणी ग्यार्जा गिक्से मेन्दो निचुइ घिग्दा प्रतिवादी शोभा मुला प्रतिवादी दा खर्ब गिक अर्ब चुइब्रेसे करोड घा बिगो दाबी लाभा मुला विभाग से राजस्व चुहाट भन्सार अन्त शुल्क थेन छोङला मनी लाउन्डरिङ थेन सम्पत्ति सुदृढीकरण कसुरला च्याबा साइबा लाभन खाबा मुला ब्योन ज्ञातेन रोजगार ब्लोन रामजी यादव से स्यान्दो ह्युल्डी मिनी पुइबा ठिम्दा व्यवस्थित लाभन व्यवहारिक नीति सेङबा बिसी सुङबा मुला ब्योन ज्ञातेन रोजगार ब्लोन खाङथेन मोक्युल आप्रवासन गेन्दुन आइओएम से सेङबा ह्वाल्डी लेङमो थान्सिबान ब्लोन यादव से सुताम सुङबा हिन्ला ब्लोन यादव से सरकार से सन् 2015 हेन्से लागू लाभा फ्री भिसा फ्री टिकट ला ठिम कागज री जेखेन ताबा से चुदा व्यवहारिक सोबारी सरकार से लातो बागे तीबान मुला बिसी सुङबा मुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा से संघीय सांसद कादेला स्वकीय लोन नियुक्ति थेन व्यवस्थापन ला ताम्री निर्देशन जारी लाभा मुला युला कोचक्याम किन्बा सुविधाला सदुपयोग लाभान स्वकीय लोन नियुक्ति प्रक्रिया दा पारदर्शी मितेबिता थेन जन उत्तरदायी सोभारी चु पार्टी से राङ्ला सांसद दा निर्देशन पिन बाहिन्ला चु पार्टीला लोन छेन विपिन कुमार आर्याल से
तेस्युबा कागुरी राङला मिनिथेन दिम थेमे भीमा फिरक्याप ग्याम जेखेन प्रविधि मैत्री बङ गे लाबारी खाम्बाथेन पार्टीदा रो लाबा मिनिदा प्राथमिकता पिन्दोला बिसी पाङबा मुला। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण से अनलाइन सट्टेबाजी बेटिङ लाभा थेन ठिम्दा नाङसी टाङ्गाला कारोबार लाभा लाग्नी बिमा लाना वेबसाइट थेन एप भन्दा लाभा मुला। सरकार से निभा चैत्र चुई सोमरी झारी लाभा शासकीय सुधारला ग्यार्जा गिक गे सुचिरी अनलाइन सट्टेबाजी थेन ठगिदा काबा विषय थान्बा मुबा। चुधिङला फिफा विश्वकप सेङबा लिचा लाख नि तोङ निचुई सोम ग्यार्जा गासे डुचुई ब्रे चुराङबा एफ थेन वेबसाइट भन्दा लाभा मुला बिसी प्राधिकरण से पाङबा मुला। नेपाली काङ्ग्रेसे भारतला बिहार झेल्डी थान्बा सर्लाहिला मेन्दोनी नेपाली सनम बोन कडेदा योनन क्लासी बाबा गे लाबारी कुटनीतिक बङ लाबाद सरकार दा पाङबा मुला। पार्टीला गेतेनबा ग्रेन लोन कृष्ण प्रसाद धुलालसे तेबा कागिरी सर्लाहिला बलरवा नगरपालिका ला सुरेश प्रसाद सिंह थेन नागेन्द्र प्रसाद सिंह मुर भारतीय बजारी रासायनिक सार ग्लुसी याइबा धुरी चुङबा हिन्ला बिसी पाङबा मुला। बागमती प्रदेश सरकार से बागमती प्रदेश ला गोर चुईसोम जोङला उद्योग प्रशासन सेवा डिजिटल प्रणाली अनलाइन सेवारी सेङबा तयारी लाभा मुला। उद्योग थेन छोङ गेजाङ मकवानपुर ग्याम उद्योग प्रशासन डी अनलाइन प्रणाली ग्याम सेवा तिबा ब्लोनखाङ से नोर्दिङ 2083-84 प्रदेश ला गोर चुईसोम नोन जोङ कादेरी उद्योग प्रशासन सेवा अनलाइन ग्याम सेङबा तयारी लाभा मुला ब्लोनखाङला सुङबोन कुमार तामाङ से सुङबा मुला। प्रदेशला चितोन काभ्रे पलाञ्चोक रामेछाप थेन सिन्धुलीला उद्योग थेन छोङ गेजाङ कादेदा नमुना गेजाङ घोषणा लासी जिन्बा ब्लोनखाङ से नोर्दिङ 2083-84 गोर चुई सोमनोन गेजाङदा नमुना गेजाङ शोभा लक्ष्य छ्याम बजेट फेबा मुला बिसी सुङबा मुबा। बाजुराला गोर्कुई स्थानीय त भाल ढुइला ग्रेन जोखिमरी मराङबा मुला। जोङ विपद व्यवस्थापन समिति से सार्वजनिक लाभा विपद पूर्व तयारी थेन प्रतिकार्य योजना 2083 अनुसार जोङला ग्यार्जा गिक घाचुई नाम्सा ग्रेन जोखिमरी मुला विषम ग्यार्जा गिक्से चुई घा नाम्सा योनन सुरक्षित ग्लारी लेतो बा मराङबा मुला बिसी जोङला सिडियो डोकेन डोरेन्द्र निरौलासे सुङबा मुला। सिडियो निरौलासे सुङबा अनुसार बढी मालिका नगरपालिका बुढी गङ्गा नगरपालिका त्रिवेणी नगरपालिका बुढी नन्दा नगरपालिका गौमूल गाउँपालिका खप्तड छेडे दह गाउँपालिका जगन्नाथ गाउँपालिका स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका थिएन हिमाली गाउँपालिकालाई लानन दिमकादे ग्रेन जोखिमरी मुला। कास्की प्रहरी से सेङबा अपरेशन डी गोर सोमची सोम मोटरसाइकल दा पोखराला लोलो लोलो ग्ला ग्याम चुङसी कारबाही तिबा मुला। जोङ प्रहरी गेजाङ इलाका प्रहरी गेजाङ सिसुबा ओडा प्रहरी गेजाङ बैदाम राम बजार थेन बगर ग्याम निभा प्रहरी टोली से तिलमा हुना चोक चेक जाँच लामा धुरी होजा मोटरसाइकल कादेदा चुङबा हिन्ला। जोङ प्रहरी गेजाङ थेन जोङ ट्राफिक प्रहरी गेजाङ से डिक्सी लाभा अपरेशन डी दाते धोना ग्यार्जा निसे गोर निश्चुई सोम मोटर थेन मेन्दो सोमचुई डु मोटर कादे सेङबा कादेदा चुङसी कारबाही लाभा मुला बिसी पाङबा मुला। युल नाङरी मनसुनी लाबाला प्रभाव तामा तिनी नोन लानन ग्लारी नाम ताइबारी खाम्से दामुला। जल्थेन मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से पाङबा अनुसार तिनी मुना युल नाङरी लाना नाम ताइबारी खाम्बा मान्बा मुला। हिमाली थेन पहाडी थुम्ला तिलै ग्लारी तिब्लिङ छ्याम नाम ताइबारी खाम्से दामुला बिसी महाशाखा से पाङबा मुला। झापाला कमल गाउँपालिका गा पाँडा जुगिरी मुबा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 38 रिजर्भ गार्ड री गे लाभा मेन्दो गिक सशस्त्र प्रहरी जवान करेन से चुङसी सिबा मुला। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहा वाहिनी मुख्यालय कोशी प्रदेशला सूचना अधिकारी थिएन ग्रेन सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक महेश केसी से
सुङबा अनुसार विद्युत लाइन शोभा धुरी करेन्से चुङमा सुनसरीला इटहरी उपन महानगरपालिका चुइसोम धिम ताबा सोमचुई दिङला जवान सुदिम खत्री तिलमा सिबा मुलाबिसी सुङबा मुला स्यानसिबान मोबा सानग्युर जिन्जी फ्याफुल्ला।

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पुर्खा कैने त्याग बलिदान साहस वीरता के कारण नेपाली भक शिर उठाक गौरव के संग ठाड़ होब सकल बतौलने आय। राष्ट्र विभूति भीमसेन थापा के 225वीं जन्म जयंती तथा पुरस्कार एवं सम्मान कार्यक्रम के संबोधन करत राष्ट्रपति पौडेल इतिहास के निक पक्ष के अनुसरण कर सकला पर मात्र वर्तमान के न्याय क सक बतौलन। ओ वीर पुरखा हमार सबके राष्ट्र राष्ट्रीयता राष्ट्रीय अखंडता एवं सार्वभौम सत्ता के लिए कने बलिदान आ पहुँचौने योगदान स्तुत्य योग्य भेल बतौलने। राष्ट्रपति पौडेल आपसी भाईचारा मित्रता सहिष्णुता आ एकता के जग में राष्ट्रीय एकता के मजबूत बनबत राष्ट्रीय प्रेम प्रति के अगाध आस्था प्रतिबद्धता के किमार्थ विचलित होब नहीं देवाक स्पष्ट कलन। राष्ट्रपति पौडेल बहुआयामिक बहु व्यक्तित्व के छवि बनौने भीमसेन थापा राष्ट्रीय राष्ट्रीयता राष्ट्रीय अखंडता आ सार्वभौम सत्ता विरुद्ध कहियो नहीं झुकल चर्च करत देशभक्ति हुनक मूल मंत्र भेल बतौलन। ओ थापा एक ईमानदार आ कुशल प्रशासक भेल बतबैत अपन शासन काल में सामाजिक आर्थिक कानूनी आ सेना के आधुनिकीकरण लगाए क्षेत्र में कैने सुधारक कार्य प्रशंसनीय रहल बतौलन। अ कार्यक्रम में सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ के सम्मान कैल गेल छल। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव संग नेपालक लेल स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉक्टर डेनियल म्यूली मोन्टेलियोन आइ लैंचर स्थित उपराष्ट्रपति के कार्यालय में शिष्टाचार भेंटवार्ता कलने। भेंटक अवसर पर नेपाल और स्विट्जरलैंड बीच के द्विपक्षीय संबंध के विविध आयाम में बातचीत भेल उपराष्ट्रपति के सचिवालय जनौलक। उपराष्ट्रपति यादव सन 1956 में नेपाल और स्विट्जरलैंड बीच कूटनीतिक संबंध स्थापना भेल सँ दू देश बीच के संबंध सब दिन सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण आ सहयोग में आधारित रही आयल चर्च करित द्विपक्षीय उच्च स्तरीय भ्रमण सबसे संबंध के आर सुदृढ़ बनौने बतौलन। उपराष्ट्रपति यादव नेपाल के शांति प्रक्रिया में स्विस सरकार निरंतर सहयोग और सद्भाव प्रति नेपाल के दिश कृतज्ञता से ज्ञापन कलन। ओ स्विस विकास तथा सहयोग नियोग SDC के प्राथमिकता में नेपाल के सेहो रखने प्रति खुशी व्यक्त करत भूकंप पश्चात के पुनर्निर्माण झुलंगी पुल निर्माण रोजगारी सृजना आ प्राविधिक सहयोग से नेपाल में अधिक सहयोग पहुँचल बतौलन। राजदूत डॉक्टर मोन्टेलियोन नेपाल आ स्विट्जरलैंड के कूटनीतिक संबंध के आर सुदृढ़ बनेबाक चाही पर जोर दैत स्विस सरकार नेपाल के उद्योग लगायत के क्षेत्र में लगानी करबाक लेल इच्छुक रहल बतौने छलैथ। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी के लिए निर्धारित कैल गेल 25 लाख धरोटी के व्यवस्था से सरकार पाछू नहीं हटत से बतौलने। शिक्षा संबंधी विषय में कलम चलाव वाला पत्रकार सबसंग आई सिंह दरबार स्थित मंत्रालय में विचार विमर्श के क्रम में मंत्री पोखरेल कतेको व्यवसायी के सुझाव के आधार पर शैक्षिक परामर्श भाषा शिक्षण तथा तैयारी कक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2083 मार्फत कैल गेल एहन व्यवस्था फिरता नहीं होबाक स्पष्ट कलन। 3% समता शिक्षा शुल्क में सरकार पाछू हटल जेहन परामर्श व्यवसाय के संबंध में सेहो सरकार पाछू त नहीं हटत एहन पत्रकार के प्रश्न कैल गेला पर मंत्री पोखरेल एहन सोच नहीं भेल बतौने छलैथ। मंत्री पोखरेल विद्यालय शिक्षा आइन जेहन कानून निर्माण करित काल सरोकार भेल पक्ष संग पूर्व परामर्श कैल जेबाक बतौलन। ओ विश्वविद्यालय सबके स्वायत्त आ दलीय प्रभाव मुक्त बनाब नवनियुक्त उपकुलपति के अपन सोच पत्र सहित के आगू बढ़ा आग्रह सेहो कयने जनौलन। नेपाल सरकार के प्रवक्ता पोखरेल शैक्षिक संस्था सरकारी कार्यालय में हफ्ता में 2 दिन के लिए देल गेल छुट्टी के पूर्ण रूप में उपयोग करबाक लेल आग्रह करत ई निर्णय सेहो कोनो पुनः विचार नहीं हाथ से बतौलन। मंत्री पोखरेल चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी चलौने अभियान प्रति स्वयं बीतल समय से पक्षधर रहल चर्च करत हुनका संग अनौपचारिक संवाद भ रहल बतौलन। नेपाल सरकार मंत्रिपरिषद के गत आखार 24 गते के निर्णय हिसाबे नियावली संशोधन भेल छल। अही बीच वह कार्यक्रम में मंत्री पोखरेल शिक्षक के सरुआ संबंधी विषय में नियावली तत्काल संशोधन कर नहीं कैल जा सकत बतौलन। शिक्षक स्वयं कार्यरत विद्यालय में कमती में 3 वर्ष सेवा देवे पड़त तसर्थ 3 वर्ष नहीं पहुँचते सरुआ होब के मांग पूरा कर शिक्षा नियावली तत्काल संशोधन कर नहीं जाल जा सकत बतौने छलैथ।
सरकार हाइड्रोजन में आधारित सवारी साधन के सुरक्षित टिकाऊ तथा प्रभावकारी विकास संचालन आ नियमन के लिए आवश्यक नीतिगत व्यवस्था करवाक उद्देश्य के संग सुझाव मांग कलक है। पूर्वाधार विकास मंत्रालय कानूनी तथा प्राविधिक आधार तैयार करवाक उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट अभ्यास नियामक व्यवस्था सुरक्षा मापदंड आ तथा दिशा निर्देश करवाक लेल आ हाइड्रोजन प्रविधि में रूपांतरण के संभावना आवश्यक जनशक्ति विकास संबंधी सुझाव आमंत्रण कलक है। विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्था व्यावसायिक निकाय उद्योग विकास साझेदार अंतर्राष्ट्रीय संस्था तथा संबंधित सरकार वाला सुझाव द सकत। अहिना अपन अनुभव अध्ययन अनुसंधान तथा व्यावहारिक अभ्यास के आधार पर लिखित सुझाव द सकत। मंत्रालय हाइड्रोजन में आधारित सवारी समर्थन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिखाई प्रस्तुत करवाक लेल आग्रह कलक है। नीतिगत कानूनी तथा नियामक व्यवस्था उत्पादन भंडारण ढुआनी वितरण ईंधन भरवला पूर्वाधार तथा सवारी संचालक संघ संबंधित सुरक्षा मापदंड एवं दिशा निर्देश उपलब्ध कराओल जा सकत। अखन संचालन में रहल सवारी साधन के हाइड्रोजन प्रविधि में रूपांतरण करवाक संभावना प्रविधिगत आवश्यकता लागत सुरक्षा तथा नियामक पक्ष संबंधी सुझाव उपलब्ध करा देवा लेल मंत्रालय सरकार वाला के अनुरोध कलक। संघीय संसद के उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति रहबर अंसारी औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण आ वातावरणीय मापदंड के पालना में राज्य कठोर रूप में प्रस्तुत हेबाक चाही बतौलन अछि। वीरगंज पथलैया औद्योगिक कॉरिडोर में आयोजित विचार विमर्श में ओ औद्योगिक के वातावरणीय मापदंड पूर्ण रूप में पालना करबाक लेल आ प्रदूषण नियंत्रण में गंभीर बना आग्रह कलन। प्रदूषण आ जन स्वास्थ्य के विषय में कोनो समझौता नहीं हाथ से हुनकर कथन छलन। सांसद अंसारी पथलैया से लाल के पुल धरि औद्योगिक ड्रेन निर्माण तथा सजिया गंदगी गंदा पानी प्रशोधन केंद्र स्थापना करवाक तैयारी भ रहल जानकारी देलन। उद्योग प्रारंभिक आ प्राथमिक प्रशोधन अपने करय पड़त वही पश्चात के प्रशोधन के जिम्मेवारी राज्य लेवासन योजना आगू बढ़ायल गेल बतौलन। सिमरा क्षेत्र में भिनसर के समय हो वाला वायु प्रदूषण कोयला तथा भूस के खुला उपयोग तथा सिरसिया नदी के अतिक्रमण नियंत्रण में समिति कठोर कदम उठात से हुनकर कहब छलन। विचार विमर्श में उद्योगी व्यवसायी एवं सरोकार वाला के उपस्थिति रहल छल। परराष्ट्र मंत्रालय राहदानी वितरण में देखल गेल समस्या शीघ्र समाधान हेबाक जनौलक अछि। मंत्रालय आई सिंह दरबार में कने नियमित पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल छेत्री नया प्रविधि प्रयोग में अनला पर किछु प्राविधिक समस्या देखल गेल बावजूदो शीघ्र समाधान हाथ से बतौलन। बीतल अखार 29 गते से राहदानी जारी करबाक लेल नया प्रणाली शुरू भेलाक बाद प्राविधिक समस्या के कारण राहदानी वितरण सुस्त भेल आ राहदानी विभाग में सेवाग्राही के भीड़ लागे समस्या देखल गेल प्रवक्ता क्षेत्री बतौलन। प्रवक्ता क्षेत्री नया प्रणाली मार्फत अखन धरि 8,260 राहदानी छपायल आ अखन दैनिक 1,300 के हाराहारी में राहदानी छपाई भ रहल आ समस्या लंबा समय धरि नहीं रहत से बतौलन। अहिना पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता क्षेत्री दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्र कम्बोडिया म्यांमार लाओस आ थाईलैंड के सीमा क्षेत्र में संचालित विभिन्न ऑनलाइन कैमिंग सेंटर में ठगायल 860 नेपाली के सरकार उद्धार केने जानकारी दिलन। सरकार 733 कम्बोडिया से 113 म्यांमार से 8 लाओस से 6 थाईलैंड से उद्धार कलक। एना विभिन्न कसूर में अखन कम्बोडिया के जेल में रहल 49 नेपाली के स्वदेश घुराब पहल भ रहल प्रवक्ता क्षेत्री बतौलन। गुठी आ गुठी संस्थानक अतिक्रमित जमीन के खोजी शुरू भेल अछि। भूमि अतिक्रमण में संघीय सरकारक जगह जागरूकता बढ़लाक बाद संस्थान जमीन के लगत संकलन तथा अतिक्रमित जमीन खाली करेबाक प्रक्रिया प्रारंभ कलक अछि। गुठी संस्थान मठ मंदिर आ पोखरि अतिक्रमण का बसोबास कर रहल व्यक्ति सब के जमीन खाली करबाक सूचना जारी कलक अछि। गुठी जमीन मालिक संबंधित गुठी वा गुठी संस्थान अछि आ गुठी जमीन के रैतानी प्रक्रिया संविधान संगे फसल कहित अदालत विक्रम संवत 2064 माघ 10 गते से फैसला से रोकायल गेल अछि। गुठी जमीन जोतय वाला के स्वतः मुहियानी हक नहीं लगवाक सर्वोच्च अदालत के
फैसला में उल्लेख है। संस्थान के प्रशासन प्रमुख ध्रुव घिमिरे के संयोजकत्व में गठित कार्यदल जनकपुर धाम स्थित गुठी आ गुठी संस्थानक जमीन 7 दिन भीतर में हटेबाक सार्वजनिक सूचना जारी कलक। जनकपुर धाम में गुठी संस्थानक 49 पोखर है। 7 पोखर के लगत संचालन कार्य अंतिम चरण में पहुंचल आ 5 पोखर लोप भ चुकल। गुठी संस्थान जनकपुर धाम के प्रमुख किशोर कुमार झा के जानकारी दिलन। पोखर के भर के बस्ती होटल अस्पताल व्यापारिक प्रतिष्ठान आ कॉलेज निर्माण कैल गेलो बतौलन। गुठी संस्था से जमीन के अध्यावधि अभिलेख नहीं रहल, अतिक्रमण के वास्तविक अवस्था अखनो स्पष्ट नहीं है। जनकपुर धाम में गुठी संस्था करीब 22-25 जमीन अतिक्रमण में पड़ल अनुमान कैल गेल। प्रमुख झा के हिसाबे रत्न सागर में करीब 9 बेलाकुटी में करीब 4 से बेसी जमीन अतिक्रमण भेल अनुमान कैल गेल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अपन व्यापार नीति पुनः संरचना करत। चीन भारत यूरोपीय संघ सहित 60 व्यापारिक साझेदार के लक्षित नया आयात शुल्क आय से लागू कलक। फरवरी में सर्वोच्च अदालत राष्ट्रपति के व्यापक शुल्क अधिकार सीमित कलाक बाद तैयार कैल गेल नया व्यवस्था कानूनी रूप में आर मजबूत मानल गेल। नया शुल्क 10-12% धरि निर्धारण कायल गेल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाली उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार के लिए उद्यमियों और व्यवसायियों की मांगों को संबोधित करने की प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की प्रतिबद्धता। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में विभिन्न ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए 860 नेपाली नागरिकों का उद्धार किए जाने की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। शिक्षा परामर्श व्यवसायियों के लिए निर्धारित सुरक्षा जमानत राशि की व्यवस्था से पीछे न हटने की शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल की स्पष्ट घोषणा। और अमेरिका ने भारत चीन सहित 60 व्यापारिक साझेदार देशों पर नए आयात शुल्क लगाए जाने का लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार नेपाली उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार के लिए उद्यमियों और व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। निर्यातोन्मुख उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने अमेरिका के नए सुरक्षा प्रमाणन नियम के प्रभावितकालीन निर्यातकों की मांग पर कूटनीतिक पहल करने और ऊन के क्वारंटीन प्रमाणन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कालीन विकास बोर्ड गठन के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख भी जताया। बैठक में प्लाईवुड, पश्मीना और डॉग च्यू उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी कानूनी और नीतिगत बाधाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री शाह ने कच्चे माल के निर्यात को हतोत्साहित करने, पश्मीना क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और डॉग च्यू उद्योग की मांगों पर आवश्यक अध्ययन कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। परराष्ट्र मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट वितरण में आई तकनीकी समस्या जल्द दूर कर ली जाएगी। मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री ने बताया कि नई प्रणाली लागू होने के बाद कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण पासपोर्ट वितरण की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन अब तक 8,260 पासपोर्ट छापे जा चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 1,300 पासपोर्ट मुद्रित किए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न ऑनलाइन ठगी केंद्रों से 860 नेपाली नागरिकों का उद्धार किया है। इनमें 733 कंबोडिया, 113 म्यांमार, 8 लाओस और 6 थाईलैंड से वापस लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कंबोडिया की जेलों में बंद 49 नेपाली नागरिकों की स्वदेश वापसी के प्रयास भी जारी है। गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने कहा है कि नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में रहने वाले नेपाली नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय सभा की समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सीमा पर बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध योजना लागू की जा रही है। साथ ही सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास भी जारी हैं। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने स्पष्ट किया है कि शैक्षिक परामर्श व्यवसायियों के लिए निर्धारित 25 लाख रुपए की सुरक्षा जमा राशि की व्यवस्था वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान व्यवसायियों के सुझावों के आधार पर नए नियमों के तहत लागू किया गया है और सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं कर रही है। मंत्री पोखरेल ने कहा कि विद्यालय शिक्षा कानून जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर संबंधित पक्षों से पूर्व परामर्श किया जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों को स्वायत्त और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त बनाने पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी की व्यवस्था जारी रहने की बात कही और बताया कि डॉ. गोविंद केसी के साथ विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर अनौपचारिक संवाद जारी है। नेपाल और कोरिया गणराज्य के बीच कृषि तथा कानूनी सूचना सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1,18,00,000 अमेरिकी डॉलर की 2 अनुदान सहायता परियोजनाओं पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते के तहत $1 करोड़ की लागत से कृषि विकास तथा कानूनी और विधायकी अभिलेखों के लिए एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा ताकि आम नागरिकों की इन तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। समझौता पत्रों पर नेपाल के लिए कोरियाई राजदूत पार्क थेयंग और अर्थ मंत्रालय के सचिव घनश्याम उपाध्याय ने हस्ताक्षर किए। अधिकार संपन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति ने कहा है कि बागमती नदी किनारे से हटाई गई अव्यवस्थित बस्तियों की भूमि को खुले सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। समिति के अनुसार इन स्थानों पर हरित क्षेत्र, खेल मैदान, पैदल मार्ग और नदी पुनर्जीवन से जुड़ी आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाएंगी, जबकि स्थायी कंक्रीट निर्माण नहीं किया जाएगा। समिति ने बताया कि बलखू, बंशीघाट, थापाथली, गैरीगांव, सीनामंगल और शंखमूल सहित अधिकांश क्षेत्रों में मलबा हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। सरकार की विजन काठमांडू 2040 योजना के तहत नदी गलियारों में पार्क, आधारभूत संरचना, ठोस कचरा प्रबंधन, नदी को सीवेज मुक्त बनाने और हरित क्षेत्र विकसित करने के कार्यक्रम आगे बढ़ाए जाएंगे। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G।

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा है कि हमारे पूर्वजों के त्याग, बलिदान, साहस और वीरता के कारण ही आज हम नेपाली होने पर गर्व के साथ सिर ऊंचा करके खड़े हो सकते हैं। आज राष्ट्रीय विभूति भीमसेन थापा की 225वीं जयंती तथा पुरस्कार एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि इतिहास के सकारात्मक पक्षों का अनुसरण करके ही वर्तमान के प्रति न्याय किया जा सकता है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा ने बाजुरा जिले के बड़ी मालिका क्षेत्र में तत्काल टेलीफोन और इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश किया है। मंत्रालय में आज हुई बैठक में नेपाल टेलीकॉम ने सावन महीने के भीतर टेलीफोन सेवा शुरू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। देश के विभिन्न स्थानों पर दूरसंचार मोबाइल टावरों के निर्माण के विषय में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के साथ भी निरंतर समन्वय होने की बात बताई। बड़ी मालिका सहित पर्यटन एवं दुर्गम क्षेत्रों में यथाशीघ्र टेलीफोन और इंटरनेट सेवा का विस्तार करने के संबंध में संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने आज प्रधानमंत्री के सूचना संचार एवं प्रविधि सलाहकार विवेक मिश्र के साथ भी चर्चा की। इस दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी यानी बेटिंग एप्स पर रोक लगाने तथा ऑनलाइन ठगी पर नियंत्रण के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। युवा श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव ने कहा है कि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र में लागू मौजूदा नीतियों को व्यवस्थित करते हुए एक व्यावहारिक नीति लागू की जाएगी। श्रम मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा आयोजित 5वें नेपाल फोरम ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री यादव ने कहा कि वर्ष 2015 से लागू फ्री वीजा फ्री टिकट नीति केवल कागजों तक सीमित रह गई है, इसलिए इसे व्यावहारिक और प्रभावी बनाने के लिए इसकी समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री यादव ने बताया कि वैदेशिक रोजगार आयन 2064 के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और निगरानी योग्य बनाने के लिए इसे पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। इस बीच प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए युवा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वैदेशिक रोजगार विभाग के माध्यम से ujuri.gov.in नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण बाजुरा जिले की बड़ी मालिका नगर पालिका 9 के सेलगाड़ क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 16 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पुलिस के अनुसार प्रभावित परिवारों को उनके आवश्यक सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन से अवरुद्ध सांफे मारतडी सड़क मार्ग से मलबा हटाए जाने के बाद आज यातायात फिर से बहाल कर दिया गया है। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध वित्तीय लेनदेन में संलिप्त 2,00,000 से अधिक वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स को बंद कर दिया है। प्राधिकरण के अनुसार फीफा विश्व कप के बाद से अब तक 2,23,568 वेबसाइटों और ऐप्स पर कार्रवाई की गई है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और ठगी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्राधिकरण ने एक अलग कार्यदल भी गठित किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने जबरन श्रम से जुड़े आयात पर सख्ती के तहत भारत, चीन, यूरोपीय संघ और कनाडा सहित 60 व्यापारिक साझेदारों पर नए आयात शुल्क लागू करने की घोषणा की है। नए शुल्क आज से प्रभावी होंगे और इनकी दर 10 से 12.5% के बीच होगी। अमेरिका का कहना है कि ये देश जबरन मजदूरी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं, इसलिए ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार जिन देशों ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है या ऐसा करने का वादा किया है उन पर 10% शुल्क लगाया जाएगा। इनमें भारत, कनाडा, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन शामिल हैं। वहीं चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों पर 12.5% शुल्क लागू होगा। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों पर पहले से लागू शुल्क तथा कुछ ऊर्जा उत्पादों, उर्वरकों और मुक्त व्यापार समझौतों के तहत आने वाले सामानों को इससे छूट दी गई है। बता दें कि जबरन श्रम से जुड़े होने का अर्थ है कि किसी वस्तु या उत्पाद के निर्माण में मजदूरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया गया हो। इसमें लोगों को धमकी, कर्ज, हिंसा, दस्तावेज जब्त करने, वेतन न देने या अन्य प्रकार के दबाव के जरिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसे अंग्रेजी में फोर्स्ड लेबर कहा जाता है। भारत में हिमाचल प्रदेश के पांगी और लाहौल स्पीति जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र कड़ू नाला में आज हुए भूस्खलन से 13 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने उपायुक्त लाहौल एवं स्पीति से बात कर दोनों घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि उपायुक्त स्वयं घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाली उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार के लिए उद्यमियों और व्यवसायियों की मांगों को संबोधित करने की प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की प्रतिबद्धता। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में विभिन्न ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए 860 नेपाली नागरिकों का उद्धार किए जाने की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। शिक्षा परामर्श व्यवसायियों के लिए निर्धारित सुरक्षा जमानत राशि की व्यवस्था से पीछे न हटने की शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल की स्पष्ट घोषणा। और अमेरिका ने भारत चीन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों पर नए आयात शुल्क लगाए जाने का लिया फैसला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
2: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
3: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
2: *1415# डायल गर्नुहोस्।
0: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
4: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
5: राष्ट्रिय रेडियो, राष्ट्रको सञ्चार।

0: ए नानी हो, कता जानी हो?
1: अनि देखेनौ र डोको नाम्रो बोकेर घाँस काट्न जान लाग्यो?
0: ए हो त नि गाँठे ममोरनी तत्तेरी।